0: कार रघुवंशी परमेश्वर जी नू नहीं किया जाता है। निरंजन निरअंजन माया रूपी चिकड़ माया काल खतो रहता है सिवदार्थ है नाल तिस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बंदगी दे नाल साडा मन मन गया है जियो
1: बिसरी लाज लुकानी।
0: महाराज नाम जपिए ते लोक मखौल करदे ने नाल दे साथी कहिंदे वेखी किते जड़ावां ना बज जाण वड्डा साधु ना हो जावी। कल साढ़े नाल प्याली दा यार सी अज वड्डा संत बनिया फिरदा है अज वड्डा नामदार रसिया बनिया फिरदा है चार क दिनां दी तेरी खेड है फिर साढ़े कोल ही आउणा इवें तरका मारदे ने। साध संगत जी बहुत सारे लोग अमृत ता नहीं छकदे साथी मखौल करदे ने वड्डा तू अमृत धारी वड्डा तू अमृत छकण वाला वड्डा तू सिख इस प्रकार तरका करके ही अमृत नहीं छकदे ते तरका करके गुरु घर नहीं आउंदे तू वड्डा भगत जी तरका सुननियां पैणगियां। महाराज ये तरका वाले नहीं टिकन देंदे ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर बचन करना करदे ने भाई सतगुरु सच्चे पातशाह जी अकाल पुरख जी ने साडे उपर ऐसी कृपा कीती है जदों ते इस दी बंदगी दे उपर मन मन गया ना बिसरी लाज लुकानी लुकानी लोकानी जो लोकाचारी दी रौ रीति चली आउंदी है पहला तो ही सो ओ लोक लाज दी कांड कनौड़ भी असा ने छड दिती है। भावे कोई भला कहे भला कहो भावे बुरा कहो हम तन दी ओ है ढार वाहिगुरु जी दी बंदगी दे अंदर असा ने शरीर लगा दिता जन्म लगा दिता एहो जन्म तुम्हारे लेखे लोकी भला कहन जा बुरा कहन लोकां दी परवाह नहीं करदे परवाह ना ही किसै केरी बाज सच्चे नाह। इस प्रकार लोकां दी लुकानी नू कान कनौड़ नू असा ने बिसरी त्याग दिता छड दिता है
1: पूरा भविख नाही तुम जैसे।
0: सो भाई ऐसे परमेश्वर जी दे सन्मुख बचन करदे ने वाहिगुरु जी आप जी वर्गा कोई परम पुरख ना भूर पहले समय भूतकाल दे विच होया है भविख नाही भविख आउण वाले समय विच भी कोई नहीं होवेगा आप जी वर्गे केवल आप ही हो ना पहला कोई आप जी वर्गा सी ना हुण है ते ना

अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे क्या तरत है। भूत बन चारी छित छौना सब दूधा तारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के पछैया ताए लोभ के धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रख बनिया मानियत है। नव के उडैया ताए पंछी की बडैया देत बगुला बिड़ाल ब्रग ध्यानी ठानियत है। जिते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पै बखानी ना है ऐसे ना परपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताए पूजरी के जैया कह नव के उडैया सो चिरैया कह बखानिया। फल के पछैया ताए बांदरी के जैया कह आदिस फिरैया ते तो भूत कह पछानिया। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के पछैया सो चकोर सम मानिया। सूरज सिवैया ताए कौल की बटाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि कह पहचानिया। नारायण कछ मझ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब तीन चारी लिखी खेस नाम के महंत लहियत है। माधव भवर यो टेरू को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूड पीटत न गूड़ता को भेद पावा पूजत न ताए जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास।

जैसे एक स्वांगी कहूं जोगिया बैरागी बन कब हूं संन्यास भेस बन कह दिखावई। कहूं पवन हारी कहूं बैठे लाए तारी कहूं लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूं ब्रह्मचारी कहूं हाथ पै लगावे बारी कहूं डंड धारी होए गए लोगन परमावई। कामना अधीन परयो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकारे परे शीतकाल कुंचर योगद हान एकदा पुकार ही कहां भयो जो पै कलवत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोरटा कुठारण सो मार ही। कहां भयो फांसी डार बुढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पपाई अतापनाथ तापना अनेक तन कहल सहत है। जाप के किए तेजो पपाई है अजाप देव पूतना सदीव तू ही उचरत है। नव के उडे तेजो पै नारायण पाई है ते अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आगम जरे ते गत रांड की परत कर पताल के पासी क्यों भुजंग ना तर।

न मोहं न मातं न कर्मं न परमं न जन्मं न जातं अद्वैखं अपेखं अयोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं अछयाद अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद अपंगे न

अभयादद्वयविनाशी परेम परा परम पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अक्षय विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे परमाथे न याते न पाते न सत्रे न मित्रे सुपूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभिखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अचय आदत व अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखातंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अपंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पीदंग न परमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तं प्रभायाद अनुक्तं प्रतापे अजुक्तं अक्षयाद विक्तय अथापे विभुक्तं अक्षयाद अक्षय स्वरूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं न जातं न पातं न मित्रं न मत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न परमं न सर्वं न साके न परमं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रे न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के परम पूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेस के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पछर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हर्म जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दोखं कहूं औषधि रोग के सोख सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत पानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हो कहूं योग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं योग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या तरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम पानी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं छिद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं परन पुराण को पार पावा कहूं बैठ कुरान के गीत गावा कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं योग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पश्चवी संस्कृति हो कहूं देश पाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेश पाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत विद्या कहूं नागबानी कहूं गारड़ू गुड़ कथा कहानी कहूं अछरा पछरा मछरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रभा हो कहूं छैल छाला तरे छत्रधारी कहूं राजसाजंग ते राजा ते कारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षय आदत वै विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग त्वस्तंग अपूते त्व प्रसाद पादड़ी छंद अव्यक्त तेजन भव प्रकाश अक्षय स्वरूप अद्वै अनास अनतुट तेजन खुट भंडार दाता दुर्म सर्पंग प्रकार अनभूत तेजन छिजगात करता सदी हरता सनात आसन अडोलन भूत कर्म दाता दयालन भूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र प्रात नहीं मित्र मात जय कर्म बर्म नहीं धर्म ध्यान जय नेह गे नहीं प्योत पान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गे नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं परम भेख जय कर्म भर्म नहीं जात पात जय नेह गे नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं परक व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रासवास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग सोग नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत
ਜੇ ਕਾਲ ਪਿਆਲ ਕੱਟਿਓ ਨਾ ਅੰਗ ਅੱਛਾ ਸਰੂਪ ਅੱਖੈ ਅਭੰਗ ਜੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਉਚਰੰਤ ਬੇਦ ਜੇ ਅਲਗ ਰੂਪ ਕਥਤ ਕਤੇਬ ਜੇ ਅਲਖ ਰੂਪ ਆਸਨ ਜਾਂ ਡੋਲ ਜੇ ਮਤੀ ਜਨ ਛੈ ਅਤੁਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਾਜ ਮੁਨ ਜਨ ਅਨੰਤ ਕਈ ਕਲਪ ਜੋਗ ਸਾਧਤ ਦੁਰੰਤ ਤਨ ਸੀਤ ਕਾਮ ਬਰਖਾ ਸਹੰਤ ਕਈ ਕਲਪ ਏਕ ਆਸਨ ਬਿਤੰਤ ਕਈ ਜਤਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤਵਦਤ ਪਾਵਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕਈ ਉਰਦ ਬਾਹ ਦੇਸਨ ਪ੍ਰਮੰਤ ਕਈ ਉਰਦ ਮਾਧਨ ਪਾਵਕ ਝੁਲੰਤ ਕਈ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਚਰੰਤ ਬੇਦ ਕਈ ਕੋ

न आद है न गाद है न ब्याद को विचार है, न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है, न हाउ है न पाऊ है न दाऊ को प्रकार है, गजाधपि नरादपि करंत सेव है सदा, चतुष्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा, अगस्त याद जे बटे तपस्तपि बसेखिया, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया, अगाध याद देवगी अनाद बात मानिया, न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिया, सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल मैं रहा, तुरंत द्रोह देख के अनंत पांत।

चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तु तिछ सरे करकसा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर पुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन बिमोचन सोच बिसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभ्रत सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रयंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध उर्धं घंट का बिराजय रुणझुण बाजय ब्रह्म भाजय सुनत सुरंग कोकल सुन लाजय किल बिक भाजय सुख उपराजय मद उरंग

स्थान को अभेश कही अत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काऊ पैना दीन साध अधीन कही अत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार सर विद्या के उदार है अपार कही अत है। हाथी की पुकार पल पाचे पहुंचत ताहे चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार केते कृष्णा अवतार केते राम कही अत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी योग द्वार दही अत है। केते महादीन केते ब्यास से प्रवीण केते कुमर कुलीन केते जच कही अत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लही अत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै अपार कह बखानिया। अद्वै अविनाशी परन पूरन प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी कह कह मानिया। जंत्र हूं न जात जाकी बाप हूं न माए ताकी पूर्ण प्रभागी सो छटा के अन्न मानिया। तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है ने जंत्र कह कह जानिया। तेज हूं को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को कार है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की शान है वृक्षता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है के मत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छा विनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूं के काल है के सतरन के साल है के मित्रन को पोखत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूरन प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को कर है। देवन को देव है निरंजन अपेव है देवन को देव है के शुद्धता

विश्व को भरना है कि अपदा को हरना है कि सुख को करना है कि तीज को प्रकाश है पाइय न पार पारावार हूं को पार जाको की जित विचार सो विचार।

देव हूँ के देव है। निरंजन अपेव नाथ द्वैव नाश है, अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ, भूम के पुजैया है मोहिया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ, को जोग है तरैया द्रुम छाल के। कामना के कार है के बोधता को हार है, के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर, छपाकर कैसी छप कालिंद्री के कूल के। हंसनी सी सिहा रूम हीरा सी हुसैन आबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारा सी पलाऊगढ़ रूपा कैसी रामपुर, सोरा सी सुरंगाबाद नीके रही झूल के। चंपा सी चंदे नीक चंदेरी कोट, चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊगढ़, काशीपुर सीरा सी सुरंगाबाद नीके सोहियत है। हिमा सी हिमाल हर हार सी हलप्पा नेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगदार बकान सी बलिंदाबाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। परासी फिरंगी परासी इसके दुरंगी, मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है। पखरी कंधारी गोर गखरी, गिरदे जाजारी पौन के आहारी, तेरो नाम त्याईयत है। पूरब पलाऊ काम रूप यो कमाऊ, सर्व ठौर मैं बिराजा जहां जहां जाइयत है। पूरन प्रतापी जंत्र मंत्र के तापी नाथ, कीरत तिहारी को ना पार पाइयत है। तो प्रसाद पादड़ी छंद अद्वै नाश आसन अडोल, अद्वै आनंद उपमा अतोल, अच्छा स्वरूप व्यगत नादा जान सर्वा प्रमाथ। जय तै मही बन तन प्रफुल्ल, शोभा बसंत जह तै प्रडुल, बन तन दुरंत खग मृग महान।

कहूँ सिमट भयो शंकर इकट्ठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तो करो सिख्य वार असिख्य संगरो।

सा सुए जड़ पुआये जंत नान पहुंचा गणत नांत बंदन बंद पुआए सुए मया जित सब सोए नच नच हसे चले सिरोए।

0: सतिया मन सतो गुप्त देने के विचार दे दे मंगे सैसे गुना सोप करे संसार चोरा जारा दे कुड़िया रखा रावा विकार
1: खुदा खाए चले था उतना बिकाएगार चल थल जिया कुड़िया नुआ कराया कार ओए जे आखे से

पौड़ी बिन सतगुरु किने न पाया, बिन सतगुरु किने न पाया, सतगुरु विचार रखे अंदर प्रगटे आग सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया, उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिओं जित लाया।

0: जा।
1: हमें यह जात है हमें कर्म कमाए, हमें यही वंदना फिर जो नहीं पाए, हमें कि छो बजे कि संयम है जाए, हमें यो हुक्म है पै कट पिराए, हमें दीर्घ रोग।